0: आप सब ने ट्यून इन किया है 107.7 आपका अपना स्टेशन और अपना म्यूजिक.
1: Who is this superhero? Sarge?
2: No!
1: Rosemary, the telephone operator?
3: No, I'm Ant.
1: Henry, the mild-mannered janitor?